सारू मारे ने दाजियो दाहो इसेज बो सारू मेरा सारू मारे दैट्स प्रिमिटिव बीम फॉर यू वी गोना कंटिन्यू विथ द बॉस हिमसेल्फ सुनार पोपो एंड द सॉन्ग इज रात के सपना हियर इज सुनार पोपो एंड रात के सपने लेट्स एंजॉय ऑन लेमन रेडियो विथ मी समारू चटनी सोका मिक्स